0: रखड़ी से बादशाह जी महाराजा
1: जी गुरु जी वाज अंतर जान सच्चे पातशाह जी महाराज जो तन तन साहिब श्री गुरु जी महाराज आप दे पावन दरबार तखत सचखंड श्री हजूर साहिब की कीर्तन दी हाल जी प्रदेव में आप जी संतालो बेअंत माया हाजिर हुई है जिस खजाने चो माया हाजिर हुई है सुख जाने पर पूर करने गुरु सिखी नाम दान दी बख्शिश करनी यात्रा सफली करनी।

सोने ते उलवे वायर बिन से बाप घनेरे बिन से बाप घनेरे सचिया पाए क्या

जानके चरण वसह मिरहियर संग पुनीता देही। जानकी तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख एही। गगन दमामा बजियो पर्यो निशान का

एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गच मछ केते उनको करत पछ, केते अच वछ हो सब पछ उड़ जाएंगे। केते नभ बीच अच पछ को करेंगे भज, केते प्रत अच हो पचा।

काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज ऋण ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत साध कित भू में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दूह को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के भीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान वडे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चो आचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी। गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं अभेखं योनिस्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धरूपं नहि जान जाई कछु रूप रेखं कहां बासता को फिर कौन फेखं कहां नामता को कहां कह कहावे कहां कह बखानो कहे मन आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं द्वेखं फेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयादद्वयविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट गोटे उपाय उसारे गड़े।

प्रतापाद अच्छ विभूतेन जन्मंग न वर्णंग न वर्णंग न व्यादय खंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न वित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नरायंग नरंकंग नरूपंग नरेखंग नलोभंग नचोभंग अभूतंग अभेखंग नसत्रंग नमित्रंग ननेहंग नगेहंग सदेवं सदा सर्वसर्वत्र सनेहं नकामंग नक्रोधंग नलोभंग नमोहंग जोनियच्छयादद्वयजोहंग नजन्मंग नमरंग नवरंग नव्याधंग नरूपंग नसोगंग अभेनिर्विखादं अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवं सदा सिद्धविर्थं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद अविक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भ्रमं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भ्रम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने, कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने, कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं, कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं, कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं, कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं, कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी, कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी, कहूँ राजसी साधकी तामसी हूँ, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ, कहूँ जच विद्या धरे मानवी हूँ, कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या, कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ के ऋष बनया, कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी, कहूँ कोक की काव कथा कहानी, कहूँ मद्र सारंग कहूँ भद्र रूप, कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे, कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं, कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं, कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राजसाजं कहूँ राजरितं, कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं, कहूँ आरबी दौर की पारसी हूँ, कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हूँ, कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी, कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी, कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं, कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं, कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा, कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा, कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं, कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ वेद रीतं, कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी, कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हूँ, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो, कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी, कहूँ राज साजं धेरा

अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाता सन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत बान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध। जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत। तन सीध घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब। कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र भच नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष। कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद क्रम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या पटंत कई गर्द भांत भांतन विचार नहीं नैकता सपायतन पार। कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अगन होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवता सपायतन पार। कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ ऋत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कही भजत एक बग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्म देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपता सपायत न अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भूकुटो।

जय जम्पह जुगण जूह जुअंभ कंपह मीर पयाल भुवंग तपतापत सर्प जलेर धलंग धनुजरत इंद्र कुमेर बनंग अनखेद स्वरूप भेद भयंग अनखंड अभूत छेद छयंग।

छेदन रंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न फोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाचे भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सत सिंध अधो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नह कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सफेत जय एक चित्त कृपा निध को जब हे तो या भव सागर कूतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम वेद उचार दसार सुति जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न काल फंदा फस है त्व प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानी अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानी सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप।

न दात मात जात है न पात जिहन वरण है अदेघ असेख अभेघ है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के विषय सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेघ है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेद नेद कह बतावई न कर्म में न धर्म में न वर्म में बताइए अगंज आद देव है कहो सो गैस पाइये जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह न गेह न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकार है अपार है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभू अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत वेग है वली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम विज है सदा छिज

को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोकार है, न आध है, न गाध है, न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आद जे बटे तपस्तपि विशेखिये, बेअंत ब्यंत ब्यंत को करंट पाठ पेखिये, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र सत्र सने जानिए, सदीव सर्वलोक के

सन गौ सन के सनंदन पावे ना सेब। जच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकार ही से सकर मुख चार। सर्व सबद अवतार के तर जाप ही जय जाप, आद देव गाद ते जन आद मुरत ताप। जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहयो बिराज ते राज राज प्रवीन। जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे, वैष्णव के बिखे बिराज शूद्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न बीज भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप, रात दिवस न मध उर्द न भूमा का स्वरूप। जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर्थ यात्रण देवूजा गोर के न अधीन। सर्व सबत अवतार के तर जानिए ज्यो ज्योत, शेष नाम सहंस फन नेत पूर्ण होत। सोद सोद हटे सभय सुर विरोध दानव सर्व, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्व। पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहियो सभु मेरे नाम नाम दुरंत। भेद भेद न पायो लखियो न सेवक देव, देव दानो मूढ़ मानो जच न जन जेब। भूत भव भवान भू

देख चक्र चिन्ह वर्ण जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्वते अनभंग सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पाल दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार वरण चहन न चक्र जाको चक्र चहन कर जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हरता श्रेष्ठ करता जगत मय जय गाथ भूत भव भवेख भवान प्रमाण देवगंज आदंत नाथ श्रीपद परम पुरख भंज धर्म के अन करम जीत कीन तौन पसार देव देव कुंद्रम किन्नर माछ कछ अपार भूमका जले थले महमानिय जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक सत्र घालक दीन दयाल मुकंद अघो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनं पुष्ट करनं सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विषहरता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड भूम का जले थले मह जप जाप मंड दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावे शिव रुद्र ओमुखचार कोटिंद्र उपेंद्र व्यास

आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखण धमके अतसी झमके फुंक फरंग जय जय हो सी मैं खास मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड खंडन खून खिते दामनी दमंकन दुजा फरंकन फणी फुंकारण ज्योत जिते सरधार विपर खण दुष्ट प्रकर खण गुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खास मर्दन भूम आकाश तलूर्ध अधे दामनी प्रहासन सुछव निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रणाचन नित नराचन धर्म प्रति श्रोणंत चिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोख निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शुद्ध मते फणियन फुंकारण बाघ पकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन दुष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैघासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाढ़ी व्रतंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सी मैघासुर मर्दन परम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंकण फण्यर फुंकारण धरम ध्वजे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाय पतार आकाशन ले संकटी निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद तवे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तत तपत तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकर खण आद अनिल गाद भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे गर्क सा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग

रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनद सुरंग को किल सुन लाजे किल विक भाजे सुखो ब्राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जय मंतन रिज्जय सवैन भज्जे रूह रणंग जय जय हुसी मैं खाजुन वर्दन चंड चक्रतन आदि गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोस अरोधन क्रूर विथे धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मैं खाजुन मर्दन आदि जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभ भंगी आदि अनंगी अगाध गते वृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आदि वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योति प्रकाशे अतुल बले दान विप्रकरखंड सर्ववरखंड दुष्ट प्रधरखंड वितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्ध लगाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हुसी मैं खासु मर्दन सात व्रत क्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फुरंके शुद्ध गते जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पति दुधारण एक भटे पापान बिहंडन दूष प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दुधारे मुंड मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन विडाल विदे सरदार विवरखंड दुर्जन धरखण अतुल अमरखंड धरम जुदे धूमराज विधुंसन सुरणत चुनसन सुंभन

पशु नग्न अग्न राधव सर्व समय सबको प्रतपार। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे, दीन दयाल दया निज दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल में दल डारे, खंड खंड प्रचंड पहाड़न पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पद्मावत वेद कते भेद उचारे, रोज ही राज पे लोकत राज करो खुरहान की रोजी न टारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए, देव देव खपे अहं बेवना भेव लख्यो भ्रम स्यों फरमाए। वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नाए, पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किंसरी।

लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दयाकर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह देह विहीन सने सभोदन नेह विरक्त गेह छह जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद्मावत लह है।

राखत है अपनो कर दय कर पाप समूह न भेटन पावे। और की बात कहा कह तू सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से समूह मिल गायो। वेद कतेब न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिंधु सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बचहारे। भेद न पाय सक्यो अन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाध वेख अद वेख जप्यो दिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध दा के दाता देव। काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे। गुर कर दीजी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना कि तेग बांधे। अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने। पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेरी तेरी मान सो तपस्या करे। देड़े वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंग वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देख के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन्ह मचीन के शीस न्यावे। ते बुद्धि ध्याय दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु बे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है। अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचाता है। चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जश कहियत है। करते है विचार वन पूर्ण को पावे पार ताहि दया पार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार। पाइये न पार व अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है। अनासी के कमानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माय जा की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनि को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के हूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है। साधन को रचक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को अभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अचय अविनाशी है। काम को गुरिंदा है के खूबी को दिहंदा है। गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोगस है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है।
रूप को निवास है कि बुद्ध को प्रकाश है कि सिद्धता को वास है कि बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है कि शुद्धता को सर है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है कि कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है कि स्त्रीहन नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विध्यावे पूर्व न पार पावे असत अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अवेव नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेवों के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुम चाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के गोल के हंस निशी सिहारो मही रसी हुसन बाद गंगा किसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी गोट चांद निशी चांदगढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसी बोल सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है फखरी गंधारी गोर गखरी गुर्द जचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूपो कमाऊ सर्व टौर में विराज जहां जहां जाइयत है पूरण प्रताप यंत्र मंत्र दया तापिनाथ कीरत तिहारी।

0: दिवस रात दोई दाई दाया खेल सक जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच त्रम दूर
1: अपनी के नेड़े।

0: जब हम देकर हटे वहर को,
1: जदो सतगुरु महाराज और जफरनामा देकर के असी वापस हटे
0: सां, हजरत को दुख होवा
1: ते पता चलिया ओ तो बाद के जदो ने जफरनामा पढ़ना कीता ओनू तरह तरह दे दुख आदि बिया

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न भयो आप आपनी बुध है जीते वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेति तुमरा लखान जाय पसारा कह विद सजा प्रथम

कैठा सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संहर।